एरियल फुड्स को उत्कृष्ट उत्पादन बुलबुल ब्रांड का मसला खुर्सानी बेसार मीट मसला मम मसला मरीच मसला जीरा पाउडर धनिया पाउडर र दालमोठ सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।

0: को उत्कृष्ट उत्पादन रिजल्ट्स पीरो चटपटे झालमुरी
1: 95.2 कालिका एफएम हृदय को स्पंदन।

0: का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। United Azure Insurance, United by Trust.
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
1: घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ बर्जर पेंट्स

0: जीएल फूड्स को उत्कृष्ट उत्पादन बुलबुल ब्रांड का मसला खुर्सानी बेसार मीट मसला मम मसला मरीच मसला जीरा पाउडर धनिया पाउडर र दालमोठ सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ।
1: 95.2 कालिका एफएम हृदय को स्पंदन।

का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुस्। United Azure Insurance, United by Trust.

निरन्तर बे आगु कालिका कालिका एफएम 95 प्रस्तुति तमुकिल बे कार्यक्रम ये पे न्यु छारी के उन्चम मलाई फेरि पनि छाजलनी ले स्वागत म प्रविधि बे आगु सुनले श्रेष्ठ दिङ किल बे रेडियो आगु सीत तमसे तर्फैटो आगुमै चुन्यो तमुकिल बे कार्यक्रम ये पे न्यु छा हरेक सातल बे मु दिन प्रि बजे नु 9 बजे सम्म प्रसारण तमो छलेनाङा क्यों दे प्रिजु कार्यक्रम ए गण्डकरी सम्म टिमो त्याचु मैनल बे अन्तिम साता अर्थात् पृखे सातल बे मुदिन आगुमै छलेन त्याङै छु कार्यक्रम रि रसैयुला तथा आगो युला रित दिवा यो त मुमलबे कार्यक्रमलबे गतिविधि बारे रे नि प्रसारण लमो छलिन तको चुले प्रसार लमा भन्दा नसो क्यो तर फेट तोई सुझा सल्लाह प्रतिक्रिया बे तामे मबे तको चु कार्यक्रम रि एसएमएस लल खामो तको चु नै चलिबा कार्यक्रम चाहिँ कालिका एफएम लबे आधिकारिक पेजहरू पनि फेसबुक गरी लाइभ प्रसारण नदी म आगुमेङ्गा तुको चु कार्यक्रम रि क्री लेख पाएर खैमो लेख शीर्षक मो कर्म कर्ण आदिवासी जनजाति पत्रकारिता पुरस्कार एटो पत्रकार हितान मगनी तमु सम्मानित विवस शीर्षक कर्मकर्ण आदिवासी जनजाति पत्रकारिता पुरस्कार एटो पत्रकार रुद्रबहादुर हितान मगनीबे इन्दिरा तमु सम्मानित तैमो छलिनेफेरि नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिज कास्की स्थापना लब कर्म कर्ण आदिवासी जनजाति पत्रकारिता पुरस्कार अन्तर्गत हितन मगरलाई 2083 साल रुपे तथा तमुलाई 2083 साल रुपे पुरस्कार प्रदान लैम पुरस्कार बिमा जो कार्यक्रम अरि गण्डकी प्रदेश रुपे प्रेस रजिस्टर्ड विमला भण्डारी निपे पुरस्कार दाता कर्म तमुसे भाङ्रा गलेख सम्मान पत्र पिमरा पनि 10,000 मुई नगद सही सम्मान ललो कार्यक्रम रि प्रेस रजिस्टर्ड भण्डारी पत्रकारिता क्षेत्र रि समर्पित व्यक्तित्व मलबे मिमलबे सम्मान नयाँ नयाँ पुस्तलबे पत्रकारितालाई व्यावसायिक जिम्मेवारीबे सृजनशील पत्रकारिता तर्फ प्रेरित लैमो तमुनि नेपालबे संस्थापक अध्यक्ष कर्ण तमुलबे वैवाहिक वर्षगाँठ स्मृति रि स्थापना लबाज पुरस्कार आदिवासी जनजाति पत्रकारिता रि योगदान लबा सञ्चारकर्मीमाले वार्षिक रूपरी हस्तान्तरण ललो पुरस्कार दाता कर्म तमै पत्रकारितालबे क्षेत्रलाई चोतोइटो युहाई मराय भनी चु सम्मान पत्रकारले मनोबल बढ्दी बल लागि पनि विश्वासै कि म तमुनि नेपालबे अध्यक्ष फोनिज कास्क्रेबे सल्लाहकार हुँ तमै सम्मानलाई संस्थागत लब लागे पनि समावेशी पत्रकारिता त्यहाँले आवश्यकता मो भिमो कार्यक्रम रि समारोह रि नेवा खल कास्केट बे अध्यक्ष अशोक पालिखेले पालिखे पत्रकारितालबे माध्यमैटो भने आदिवासी जनजातिलबे विषयलाई भने समाजरि उजागर लम्दै भोलपरिमो बिमरा जोड पिमो छल्ने फेरि पुरस्कार छनौट समितिबे संयोजक दिपेन्द्र श्रेष्ठै 40 दशक भन्दाले पत्रकारिता लम्दै खतिबा पत्रकार हितान मगर पत्रकारिता क्षेत्र लिने प्रेरणाले लागे पनि स्रोत तैमो पिमो तको फेरि अर्को सम्मानित मि इन्दिरा तमुस्युल बे क्वी पत्रकारिता रे पनि उत्कृष्ट मेहनत मोबा जानकारी पिमो चु पुरस्कृत तब हितान मगर है चु सम्मानटो अझै पनि पत्रकारिता लब जोस जागर तैमो भिमारा आदिवासी जनजातिलबे छात्र संस्था स्थापना लब सङ्घर्षलबे स्मरण लम्दै पत्रकारिता निष्पक्ष स्वतन्त्र निभयभुक्त मुक्त तब आवश्यक मो भिमो अर्को पुरस्कृत तब रि चमी चाहिँ क्वी पत्रकारितालाई 2054 सालै टो रेडियो नेपालरी आबद्ध तब आदिवासी जनजाति समुदायले मुद्द क्वी संस्कृति तथा समसामयिक विषयरी भनी पत्रकारिता मार्फत निरन्तर योगदान दिँदै खदिमो फोनिज कास्कीबे अध्यक्ष बिना कुमारी थापालबे अध्यक्षता रि सम्पन्न तब कार्यक्रमले सञ्चालन सचिव देविका तमुसे ललो सु पुरस्कार एटो चुबन्दा न सु रिता तमुस्यु तिलक पुन हर्काले मगर राजबहादुर तमु शान्ति एमबी आस्था मगर हुमबहादुर तमु उदयबहादुर आमत्य रुद्र श्रीष मगर दिपेन्द्र श्रेष्ठ निबे खेम सारु मगर सम्मानित तलखाइमो छल्ने फेरि चु कार्यक्रम रि राष्ट्रिय कौडा संरक्षण पत्रकारिता पुरस्कार 2083 टो सम्मानित मिना थापा मगर पोखरा महानगरपालिका रे युवा उत्कृष्ट
उत्कृष्ट तब फ्रेसी पुरस्कार रमाइटो पनि सम्मानित तब दुर्गा राणा मगर निबे पोखर बे सञ्चालन तब एघारौँ राष्ट्रिय हेपकिदो च्याम्पियन मेघमा तमुसीलाई पनि खादा कुमेर सम्मान लै म स अवसर रे बने तमु विद्यार्थी समिति कास्केती बे अध्यक्ष सतीश तमुलबे कार्य समिति कर्म तमुसीलाई पनि सम्मान लै म आगुमितुको चु कार्यक्रम रे फेरि पनि कोही खिउती तैमु छलिन थेदित ओतिजु छ्याम्बकै मलमली चोली मनस्तमु उषा तमुसीलबे स्वरा मुबा।